किसी लगे लाफ्ट वो टाउट सख्स हो गया ना आसमानी लाउट साउ के नेम नो बुंग मिपियो ले पैनिक पटा सिला ले रही हूँ ना मिसले ले गया ना अब लोगों ने तमाने के बाल लंग में अम्मा के चंग ने ने चंग ना तम्मा लो तलो तुम ना सुला ओ मिगित्सी तो साइ